नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्या ना क्यों सताते हो